इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर with one goal to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner Radio Chinar 90.4 FM.
1: Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
2: Eid, apno se gale milne ka din.
1: Hey, assalamu alaikum, assalam.
3: Eid, bachchon ki khushiyon ka din. अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन
2: ईद अमन और भाईचारे का दिन
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन
1: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
2: टीम रेडियो चिनार
3: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
4: मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव

और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

বসুরঙ্গ চুকত পরি চশোবি জাম ধরি বসু।

वसक ना यार बने चले ना खोर भरे असक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
3: ईद मुबारक।
0: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन। ईद

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

टीम रेडियो चुनार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

सज गया है आसमान, देखो सज गई है ये सरजमी। हुस्न तेरा काबिल तारीफ, जन्नत से कम नहीं। हसरत है तेरी जैसे सांसे ही तुझसे हो। बेकाबू दिल बेताब की बस गई हर धड़कन में ही। हाथ फूल

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर With one goal, to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद

0: अमन और भाईचारे का दिन।
1: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
2: मुबारक ईद मुबारक।
3: टीम रेडियो चुनार
4: की तरफ से आप सभी को
3: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद

टीम रेडियो चुनार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक।

0: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic Sports Stadium, Chandigarh.

0: Nam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogaon, Lone Beauty Care Sogaon, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lola T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.
1: Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
2: Eid, apno se gale milne ka din.
3: बच्चों की खुशियों का दिन ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन
2: ईद अमन और भाईचारे का दिन
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

वसक ना यार बने चले ना खोर भरे असक ना।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
4: वेलकम है हजरात, भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन। ईद

टीम रेडियो चिनार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lola T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam, Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
1: टीम रेडियो चुनार
0: की तरफ से आप सभी को
1: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक। Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन

0: अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
1: टीम रेडियो चुनार
0: की तरफ से आप सभी को
1: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत। The Battle of Cricketing Giants. 32 teams from North Kashmir with one goal to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam, Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official radio partner, Radio Chinar 90.4 FM.
3: Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
1: Eid, apno se gale milne ka din.
0: बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो टू लिफ्ट द ट्रॉफी मार्क योर कैलेंडर फॉर दिस नॉकआउट T20 क्रिकेट कप टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड फ्रॉम 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. मीडिया पार्टनर TRK न्यूज कश्मीर नशा मुक्त लोलाब T20 क्रिकेट कप 2026 इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट ऑफिशियल रेडियो पार्टनर रेडियो चिनार 90.4 FM

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके

गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल।

0: our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.
1: Assalam alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
2: Eid, apno se gale milne ka din.
1: Hey, assalam alaikum, assalam.
3: Eid, bachchon ki khushiyon ka din. अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन
2: ईद अमन और भाईचारे का दिन
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन
1: मुबारक ईद मुबारक
2: टीम रेडियो चिनार
3: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

सुरंग चुकत परी चशोभी जान धरी बसो।

वसख ना यार बने चले ना खोर भरे असख न।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Godzilla, dame Godzilla, Godzilla.
1: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
3: आई कांट वेट बिकॉज़ शी हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेट्स गो।

हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लगा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर मगर मैंने

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प प म रे

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना ओ मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा हा, फिर उसका पल्लू बनके उसका दांत, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ, उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हा, हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: से जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: जाते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोह

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।